सोचते गाँव भेंगवाली भी वाले जंगलों ने थोड़ा कार्सने सोलर पद ऑलर बुर्दुल्ल वही सोतांग याम ने के चिर वही हुलत भेगा वनोल हिंद वही भेन वह जंगलों उधर इन्नर उध बाल दिले उध गले और विंशन हमकुने बात तो ये अल्लाद कर जिरे हुले बाल्लत Tengri yang naroi udung utelin cina hulaga, tulang jangjung garjir hulaga, ciri gan hulaga.